0: फिर एक आया है मैसेज, गुड मॉर्निंग दर्पण फैमिली, ग्रेट स्टार्ट विद न्यूज एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद भजन क्लबिंग. ए आई भजन हैज नो क्रिटिसिज्म बिकॉज इट इज अ प्रेयर, बट माई प्रेफरेंस फॉर प्रेयर वुड बी थ्रू अ पर्सन हु इज हार्ट टू हार्ट प्रेइंग. फिर लीला जी लिखती हैं, पूनम जी के सुंदर विचार पर आधारित मेरी एक स्वरचित रचना है जिसका नाम है सुंदरता मेरी नज़र में. जिसके प्रेम में प्रेम भरा, जिसके मन में प्रेम भरा हो, जो करुणा का गहरा सागर, उसका तन चाहे जैसा हो वह नर है सुंदरता आगर. जिसके दिल में सुंदर भाव हो, जो प्रभु को कण कण में जाने, जो सबको ही सुंदर समझे, जग उसको सुंदरतम माने. सेवा का जिस घर पर पहरा, सत्य जहां स्वागत करता, मुस्काने वहां द्वार खोलती, वह घर की सुंदरतम लगता. सत्य बात तो मधुरम भी हो, जो कर सके किसी का हित भी, जो जीवन को स्नेहिल कर दे, वह होती सुंदरतम निधि. यूं तो कोई नहीं कह सकता, झूठ भी जग में सुंदर होता, काम किसी का जिससे बनता, झूठ भी वह सुंदर ही होता. गोरे गोरे कोमल कर को जग में सुंदर माना जाता, लेकिन दान व कर्मशील कर सचमुच सुंदर है कहलाता. धोखे रिश्वत से आया धन, धन तो कहला ही सकता है, पर मेहनत से प्राप्त किया जो वह धन सुंदर कहलाता है. खिली हुई मुस्कान सरल सी, निर्मल दर्पण निर्मल शुभन, कभी बेयार बसंती सुंदर, कभी शीत आतप या फिर धन. तो इस तरह से लीला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बड़ी लंबी कविता आपने लिखी बहुत ही सुंदर ढंग से. क्षमा चाहूँगी पूरी नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत सारे और भी मैसेजेस पढ़ने होंगे. भजन प्लस कभी क्लबिंग इज इक्वल टू भक्ति माइनस टेनमेंट. फिर एक आया है मैसेज, भजन क्लबिंग इज फॉर एवरीवन. आई अटेंडेड द बिग भजन क्लबिंग इन टाउन हॉल एंड इट वॉज फैंटास्टिक, ग्रेट फॉर ऑल एजेस. कॉन्ग्रेचुलेशन टू शौर्य जी एंड गुड लक. उत्तम विचार डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा जी, पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई. वाई शुड आई परचेज अ बुक, वेयर इज द सस्पेंस. तो इनडायरेक्टली कहा गया है कि पूरी बात ना खोलें. रामकृष्ण बंसल जी कहते हैं, अभी लाइव रेडियो सुन रहा हूँ, इंगेजिंग बातचीत और समुद्र गाने. डॉक्टर लीला जी फिर लिखती हैं, डॉक्टर प्रदीप सिन्हा जी की वार्ता बहुत रोचक और प्रेरक लगी. प्रदीप जी पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई. फिर आया मैसेज, नाइस रेडियो प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय प्रदीप जी. ऋचा जी लिखती हैं, थैंक्स फॉर द अनाउंसमेंट, प्रोग्राम स्टार्ट्स विद नाइस एंड न्यू भजन फॉलोड बाय डिटेल्ड समाचार, नाइस इंटरव्यू विद प्रदीप जी, सॉन्ग्स आर ऑफ ग्रेट चॉइस. तो यतीन जी आपको भी तारीफ कॉम्प्लीमेंट मिला है,
1: फाइनली
0: बहुत सुंदर गाने लगे हैं सब.
1: तो एक पूनम जी, हमारे समीर मेहता जी अभी फोन पे आ गए हैं
0: जी.
1: वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो नेपाली जो अभी वहाँ पे सुनामी आई उसके बारे में. समीर जी आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है.
2: तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार
1: जी. समीर जी बताइए, आपने जो नई संस्था आपने बनाई है और क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए.
2: मैं आपको सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि नेपाल में जो डिजास्टर हुआ उसके बाद में हमारे सब कम्युनिटी लीडर साथ में आए हैं और हम लोगों ने अभी मिलके एक नई संस्था शुरू की है. वो जस्ट एट इन्फेंसी स्टेज. उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फाउंडेशन फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड द पर्पज ऑफ द फाउंडेशन इज टू कलेक्ट मनी एंड देन इंश्योर दैट इट रीचेस टू द नीडी पीपल एट द ग्राउंड एट नेपाल. So, उसके लिए हम लोगों ने अभी 18 अक्टूबर को एक इवेंट फंड रेजिंग डिनर ऑर्गेनाइज किया है. और तो हमारे इसमें ऐसे कहने का था कि हम सब लोग अभी कम से कम 15-20 साल तो हो गए ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम सब लोग अभी ऑस्ट्रेलियन है, तो एज ए ऑस्ट्रेलियन हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ भी डिजास्टर हो तो उसमें हम लोग कैसे फंड इकट्ठा कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि मदद जो है वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाए, उसमें एडमिन फीस ना हो, तो ये वजह से हम लोगों ने अभी ये फाउंडेशन चालू किया है। तो इसमें अपने बहुत कम्युनिटी लीडर साथ में जुड़ गए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जो मदद है वो एक्चुअल निडी लोगों के पास पहुंच जाए।
1: तो ये इसमें DGR स्टेटस एक चीज होती है, वो भी है क्या?
2: यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यस, तो अभी हमारे पास तो DGR स्टेटस नहीं है फाउंडेशन के पास, क्योंकि अभी चालू हुआ है, लेकिन हम लोग जो सेवा ऑस्ट्रेलिया है, फिर रेड क्रॉस है और भी 2-3 संस्थाएं हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जो कोई भी डोनेशन करेगा उसको DGR स्टेटस का रिसीट भी मिलेगा, प्लस वी विल ऑल्सो इंश्योर दैट देर वोंट बी एनी एडमिनिस्ट्रेशन फीस एंड फंड्स विल डायरेक्टली गो टू PM नेपाल केयर फंड, आफ्टर दैट इट विल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द फंड।
1: श्रोताओं, एक मैं बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद जरूर मालूम होना चाहिए, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि प्रदीप जी, यहाँ पे जो डोनेशन हम देते हैं ना, आप अगर $1 देते हो तो अगर 1/3 भी पहुंच जाता है कॉज के लिए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 1/3
0: तो बाकी का सारा एडमिन फी और ये सब में निकल जाता है,
1: सारा का सारा उसमें निकल जाता है। आपको मिलते हैं ना, जैसे आप कभी रेलवे में जाएंगे तो लड़के खड़े होते हैं डोनेशन के लिए, वर्ल्ड विजन ये दे दो, उनको 1/3 लगभग 30-40% उनको जाता है।
0: ओके, ये तो नई बात है।
2: इसके लिए हमारा वही प्रयास है कि जितना मतलब जीरो, कोई भी एडमिन फीस ना हो, समझो हमने 40,000-50,000 कलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा पैसा उधर जाए। तो हम लोग ऐसे तो जो फंड रेजिंग का डिनर का जो कॉस्ट भी है वो भी कम्युनिटी लीडर्स अपने जेब से पे कर रहे हैं, तो वी आर फंडिंग इट आवरसेल्फ टू सो दैट एंटायर मनी रीचेस टू द नीडी पीपल।
1: एक बार समीर जी दोबारा से जो प्रोग्राम का डिटेल है वो शेयर कर दीजिए, अपना फोन नंबर भी शेयर कर दीजिए।
2: श्योर, प्रोग्राम है 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से ग्रैंड रॉयल ग्रैनविल में, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं सभी से अनुवाद करता हूँ, आप भी जुड़ जाइए, लेकिन इट विल बी एन इनविटेशन ओनली इवेंट। तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 0431-317-685। मैं बताता हूँ 0431-317-685, एंड देन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू ऑफिशियली इनवाइट यू फॉर द इवेंट, एंड वी विल जस्ट इंश्योर दैट योर मनी रीचेस टू द नीडी पीपल।
1: समय दिया, आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और ये इनिशिएटिव के बारे में आपके सभी श्रोताओं को बताने के लिए
1: धन्यवाद। प्रदीप जी,
3: जी
1: 18 तारीख को 2 तो प्रोग्राम अभी हो गए।
3: अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे समाज
1: में बहुत फंक्शन हो रहे हैं,
3: एक्टिविटी हो रही है।
1: तो थोड़े एक दो और हम आपसे बातें करें।
3: बिल्कुल,
1: कि एक जैसे कि आसमान जी ने बोला है कि भाई सस्पेंस शेयर नहीं करना है, वरना फिर लोग क्यों खरीदेंगे किताब को।
3: नहीं,
1: तो
3: नहीं, इसका सस्पेंस ऐसा है कि खरीदेंगे क्योंकि क्योंकि उस अंतरात्मा जो उनके साथ आ गई, उन्हें गाइड कर रही है
1: जी।
3: कैसे गाइड किया, हाँ, क्या बताया,
1: वो हर हर हर वक्त वो उसमें
3: किस तरह के सीन से। तो जैसे कि एक सीन मैं और बता देता हूँ कि विवेक हीरो आए अपने ऑफिस से, जूते उतारी थे कि उनकी बेटी आदिति आ गई उनके पास कि पापा पापा देखो मेरी ड्राइंग। पापा ने देखा, थैंक यू, उसी समय फ़ोन बोला, फ़ोन रिंग किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, तो वो बच्ची को अच्छा नहीं लगा। तो ये जो भाव था बच्ची का, किस तरह से उसको महसूस हुआ और उनका इग्नोरेंस, वो सब उनके सामने आ गया। तो ये इससे काफ़ी, इट इज़ सॉर्ट ऑफ एजुकेशन हाउ टू लिव लाइफ। तो इसी तरह के
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया के अन सेड थिंग्स,
3: हाँ,
0: जो आप उस समय नहीं रियलाइज करते, बट उसने जिस कंडीशन में अब थे वो,
3: हाँ,
0: तो वो सारे भाव उनको अब आ रहे हैं
3: दोनों तरफ के, अपने भी अपने और उनके भी। सो इट इज एजुकेशन।
0: ये मामूली सी बात है, आपका बच्चा आया और बात की, आपने फोन अटेंड करने में लग गए, तो आप इस बात को भूल जाते हैं
3: कि आपके लिए फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट
0: इम्पोर्टेंट है।
4: और ये ना जैसे लाइक एवरेज डे टू डे लाइफ रिलेट कर पाएंगे लोग, तो कि ये बहुत लाइक कॉमन इंस्टेंसेस होते हैं, ये सबके साथ होते हैं, तो ये बुक वो उनको एक नया पर्सपेक्टिव देगी कि ऐसे भी लोग फील कर सकते हैं इस बात को.
1: प्रदीप जी, मैं आज मैं खुद भी अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपसे और श्रोताओं से. सबसे मैं डेली डायरी लिखता हूँ.
3: बहुत अच्छी बात है,
0: फिर तो आप और तो किताब लिखने की प्रॉब्लम साथ हो गई.
1: मैं काफ़ी डायरियाँ हो गई होंगी, आप समझ सकते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उम्र में लोगों को मालूम पड़ जाएगी, जबकि मैं अभी 18 साल का हूँ. तो मैं क्या करता हूँ प्रदीप जी, मैं पूरे दिन को रिविजिट करता हूँ, रात को सोने के पहले लिखता हूँ. और फिर मुझे एहसास हुआ, ओह मैंने प्रदीप जी को कुछ ऐसे बोला, चाहे भले ही प्रदीप जी ने नोटिस करा या नहीं करा, मेरा क्या काम होता है सुबह अगले दिन, सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि मैं प्रदीप जी को फ़ोन करूँगा, प्रदीप जी आई एम रियली सॉरी, कल ऐसे मुँह से निकल गया, आई डिडंट मीन इट. अब वो आपके हाथ में है, आप मुझे माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को उससे निकाल दिया है.
3: इस बात का भी जिक्र इसके है.
0: सही कह रहे हैं,
3: इस बात का भी जिक्र है इसमें. और इसमें ऐसा है, खास बात यह है कि आप कोई भी चैप्टर खोल लीजिए, कोई भी पार्ट, आप उसे सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं. छोटी छोटी
1: छोटी छोटी कहानियाँ हैं. तो मैं समझता हूँ कि जो आप अगर जीवन जिएंगे तो गलतियाँ ये सब तो होगा
3: बिल्कुल होता, सबसे होता है,
1: वरना पैरानॉइड हो जाओगे. लेकिन उसका एहसास होना और उस एहसास को आपको आगे एक्सप्रेस कर देना कि भाई रियली आई एम सॉरी, या यू नो जो भी आपका भाव है,
3: ये आपको रिलीज करता है उससे. हाँ, जैसा आपने कहा,
1: वो माफ करे ना करे, वो अलग की बात,
0: आपकी तरफ से हो गया.
1: एग्जैक्टली,
0: बहुत बढ़िया.
1: वो एक मेरा पहलू रहता है और मैं काफी सालों से मतलब ये चीज कर रहा हूँ और इट गिव मी, मैं उससे निकल जाता हूँ फिर. और फिर एक और मेरा भाव होता है कि कल का ये 3 दिन मर चुका है, लेट्स लिव टुडे.
3: ठीक है, अच्छी बात है,
1: बात खत्म.
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: उसके ऊपर ये नहीं, कल मैंने बोला था मैं खड़ा हूँ, अरे भाई हो गया अभी, हो गया, क्या करेंगे. अच्छा ये बताइए, आपने अंग्रेजी में क्यों लिखी? अब हिंदी का रेडियो प्रोग्राम भी करते हो,
3: हिंदी का प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं. देखिए ऐसा है कि जो मेरे पास लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में था, हिंदी की टाइपिंग पहले इतनी आसानी से नहीं होती थी, अब तो आसान हो गया है काम, हिंदी में हो जाता था. तो उसे लिखा, इसका एक रीज़न तो ये था कि भाई रेडीमेड माल है उसे बना दो. दूसरा ये था कि मैंने सोचा, देखिए ऐसा है कि आप भारत में तो काफ़ी कुछ नॉलेज होती है लोगों को, लेकिन विदेशों में अगर ये पढ़ी जाएगी तो इसका कुछ इनपुट उनके पास भी जाएगा, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति की ये बहुत कुछ इसमें झलक है.
1: तो आपने लिखा है कि जैसे एक ओम करके आपने लिखा है इसमें, इंस्पायर्ड बाय वैदिक विजडम, तो आपने वेदों का भी यहाँ पे
3: बिल्कुल
1: तो सरल भाषा में, अगर मैं ऐसे समझूं, सरल भाषा में आपने वेदों का भी जिक्र करके लोगों तक पहुँचाया. एम आई राइट हियर? और
3: यस बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इसमें जो भी ये बातें कही गई हैं वो सारे वेद संगत हैं. मतलब ये है कि
1: इसमें 1.16.46
3: नहीं, वो तो ये जस्ट कोटेशन, इसके अंदर एक और कोटेशन, इसके अंदर एक और कोटेशन है, और जो मैक्स मुलर ने 1880 में लिखा था अपनी बुक के साथ, अपने कमेंट्स के साथ, तो वो भी है. लेकिन इसमें ऐसा है कि यतेंद्र जी, इसमें जो हर चैप्टर है, चैप्टर इज कुड बी इंडिपेंडेंटली रेड. आप जैसे ही काइंडनेस के बारे में बताया गया है, आपकी ये क्षमा मांगने के लिए के बारे में बताया गया है, इसमें आपके जो भी एक्शंस हैं उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, कहाँ तक जाता है. जैसे कि एक बच्चा बेंच पर बैठा हुआ है, वो रो रहा है, 6-7 साल का है, तो ये लेडी आती है, पूछती है कि क्या हुआ बेटा. वो बोलता है कि मम्मी कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है, मम्मी अलग हो गई है. तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी मम्मी को ढूंढती हूँ. तो ढूंढा, बच्चा चला गया वहाँ से. अब बच्चे पर इतना असर होता है उस बात का, वो बड़ा होता है, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से अपने पेशेंट्स को देखता है, उनसे अच्छी तरह से बात करता है और उनकी उनकी जो बातें हैं सुनता है, तो हर बात का आदमी की पर्सनैलिटी पर फ़र्क पड़ता है, स्पेशली बच्चे को किस तरह से आप डील करते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये भी इसमें एक छोटी सी वो है, कहानी है।
4: आई थिंक ओवरऑल जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करा था, बहुत अच्छे से लिखा गया है, इट्स लाइक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और तो कि इंग्लिश में लिखा गया, जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती, तो आई थिंक जो यंगर जनरेशन जो हिंदी समझ सकते हैं और हिंदी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं या जो हमारे कल्चर में से आ सकते हैं बट वो हिंदी पढ़ नहीं सकते, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लाइक ये लाइक अ यंग ऑडियंस कैन ऑल्सो रीड दिस।
1: एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, कई चीज़ें आपसे अपनी आज जिक्र कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ये हाथ काम कर रहे हैं, इस शरीर काम कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे अलग हो जाता हूँ, मैं जैसे किसी की हेल्प करी और उसका जो भी होना आया, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, वो मुझे धन्यवाद के लिए, मैं कहता हूँ भाई लिसन, ये मेरे जीवन में आपका इतना हिस्सा था, आप लेके गए, आई एम नथिंग टू डू विद दैट, मेरे जो मेरे जुबान से भी कुछ चीज़ें अभी निकल रही हैं वो मेरा नहीं, काम ख़त्म करो।
0: तो आप ऑब्जर्वर बन गए, ऑब्जर्वर बन के कीजिए, डूअर बन के।
1: मैं नहीं कर रहा हूँ बस, मैंने ख़त्म कर, अगर इस भाव से मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा कोई कर्म ही नहीं है, मैं क्यों उसमें फंसूँ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, हमारे एक प्रवीण गोयल जी हैं, वो यहाँ पर आए थे, उनका इंटरव्यू कई साल दो साल तो हो गए, उनके उनसे बात हो रही थी, तो वो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि कोई आपके सामने जा रहा है, उसका हैंकी नीचे गिर गया, आपने कहा अरे आपका ये गिर गया है आप ये ले लीजिए, तो उसने अपने लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, आगे चल दिया, तो आपको लगा कि यार इस आदमी ने थैंक यू ही नहीं बोला, अगर आपको ये लगा कि आपने उसने थैंक यू नहीं बोला तो एक कर्म हो गया आपका।
1: एग्जैक्टली बिल्कुल,
3: लेकिन अगर आपने कोई बात नहीं, आपने सोचा ही नहीं इसके बारे में, तो जैसा कि आप कह रहे थे ये अकर्म हो गया, इससे आपका कोई बंधन नहीं है।
1: एक्चुअली इन हाथों से काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ है, मैं आप मालूम क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर डिलीट कर दो, और वो जो दिवाली हो उसके जो आते मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करके आते हैं ना, वो मैंने कहा वो भी नहीं, और कहीं मिलूँ मुझे पहचानना भी नहीं, और मैं एक्चुअली मैं खुद भी मैं जैसे कोई मिला तो मैं देखता हूँ तो ऐसे करके देखूंगा क्रॉस करके निकल जाता,
3: ये तो ठीक
1: नहीं है, मैं क्यों उसको उस चीज़ की याद दिलाऊँ, वो उस समय था, वो डिफ़िकल्ट वाला समय होता है जीवन में, मैं क्यों उसको याद दिलाऊँ।
3: नहीं तब भी अपना मतलब ये है कि आप प्रेम भाव रखिए,
1: अगर वो रखना चाहता है वो अलग की बात हो जाती है, लेकिन मैं क्यों उसको उसमें लेके जाऊँ ना, मुझे देख के उसको वो दिन याद आएंगे। एनी हाउ मैं कहाँ अपना उसमें पढ़, अच्छा ये बताइए तो अभी ये किताब कोई कैसे खरीद सकता है, कहाँ पे कैसे क्या चल रहा है?
3: देखिए अमेज़न के स्टोर पर चले जाइए, अच्छा। या वेबसाइट पर जाइए, वहाँ बुक सेक्शन में जाकर ड्रॉन बैक टाइप करिए,
1: तो DRAWN ड्रॉन बैक, तो जो इसका किताब का नाम भी है वो इंग्लिश में, तो वहाँ ड्रॉन DRAWN बैक BACK ये नाम है, और उसमें आप लेखक के नाम से भी डाल सकते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा, और अब किताब आपको मिल जाएगी और डिलीवर हो जाएगी।
3: आपने एक सवाल नहीं पूछा है सर।
1: जी जी जी,
3: ड्रॉन बैक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने पूछा ये नाम क्यों रखा।
1: अभी अभी अब उस पर आते हैं, लेकिन एक सेकेंड तो जो लोग खरीदना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी बुक है और मेरे हाथ में ये बुक है, बहुत खूब खूब बहुत देखने में भी अच्छी है, मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, जो पेज है प्रदीप जी आप बता रहे थे कि आप नहीं इसको डिज़ाइन करा, तो सारा कुछ आप,
3: मैंने डिज़ाइन किया एक्चुअली, ये ChatGPT 3 इसका जो कवर है, कवर मैंने ChatGPT से डिज़ाइन किया,
1: मैंने कुछ नहीं कहा पूनम जी।
3: नहीं नहीं ये तो
0: नहीं ये तो अच्छे ढंग से ChatGPT का इस्तेमाल
1: किया जाए। अच्छा चलिए अब आप बताइए मुझे कि ड्रॉन बैक एक कैसे नाम आपने डाला, एक क्या
3: मैंने कई नाम सोचे थे
1: जी,
3: जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, क्योंकि पैरेलल है वहाँ कोई जनरली आप एक से दूसरे में नहीं जा सकते हैं। फिर मैंने सोचा, फिर किसी ने कहा कि यार पैरेलल यूनिवर्स से ये लगता है कि ये जैसे कि साइंटिफिक फिक्शन है। अच्छा, तो फिर ये लगा कि ड्रॉन बैक दिमाग में आया, क्योंकि इट इज़ इनवॉलेंट्री, आप अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते हैं, आपका जन्म होता है क्योंकि आपके कार्मिक डेट्स हैं, कार्मिक बंधन है आपके, इसलिए आपका पुनर्जन्म।
1: ना अपनी मर्जी से जन्म होता है, ना अपनी मर्जी से मृत्यु होती है
3: आपको।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है जो मालिक ने ये चीज अपने हाथ में रख ली, वरना एआई के आने के बाद कोई जिंदा ना बचता।
3: बोलिए।
1: तो एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए।
3: बिल्कुल
1: ठीक है ना, और उसके बाद में हमारे नए मेहमान भी, मेहमान नंबर 2 जिसको कह सकते हैं, वो भी आ गए हैं, उनसे अभी हम आपका परिचय कराते हैं।

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000.
3: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
4: आप श्रोताओ, हमारे दूसरे मेहमान भी आ चुके हैं। सुमित जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यतिंद्र जी। इट्स अ वंडरफुल।
4: आपके बारे में हमने लिखा था, आपने हमारा जो ग्रुप वगैरह उसमें लिखा था कि आप सनातन या सात्विक फूड के हेड हैं।
5: नहीं नहीं,
4: ऐसे करके मैं
5: सेवा कर रहा
4: हूं। लेकिन आप परिचय दीजिएगा। पहले थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए और आप ये जो भागीरथ प्रयास अगर मैं बोलूँ वो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए।
5: तो यतिंद्र जी, मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट एंड वास्तु कंसल्टेंट, बट इस चीज़ के बारे में हमें पता चला जब मैं आईटी में, आई थिंक 2021 में मैं को इस बारे में पता चला था। इट वाज शॉकिंग ऐसे हुआ
4: कोविड के टाइम पे
5: है?
4: कोविड के टाइम,
5: कोविड से शायद 6 महीने पहले, शायद 2020 की बात होगी फिर। ये मे बी इट वाज क्वाइट अर्ली इन द स्टेज। हाँ, 2020 की बात है। और हमें जब इसके बारे में पता चला तो हुआ क्या कि मैं अपने बेटे के लिए वाइटामिंस लेने गया और वाइटामिंस की बॉटल पे मैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चेक करता हूँ जेलेटिन्स वगैरह तो नहीं है।
4: अच्छा अच्छा, हाँ सही।
5: इसी में तो मैं जब वो देखने लगा तो प्रोडक्ट वेजिटेरियन था बट उस पर लिखा था नो हलाल सर्टिफाइड या कोशर सर्टिफाइड। मैंने बोला यार, वेजिटेरियन प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफाइड, आई डोंट गेट इट, यू नो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि है क्या चीज़। तब मेरी जर्नी शुरू हुई।
4: अच्छा।
5: और फिर मैंने 2-3 अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ में रोज़ का उठना बैठना है, कुछ जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके, उनको बताया। एवरीबडी वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा ठीक है।
4: तो लोगों को जागरूकता नहीं थी?
5: मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं थी। और आज भी हमें आज भी बहुत काम करने
6: की। क्या बता रहे हैं, मैं आटा लेने गई तो वहाँ आटे के ऊपर लिखा हुआ है हलाल,
4: चावल, दाल,
7: इसमें हलाल की क्या बात हुई?
4: शुगर
6: इसका कुछ हिस्सा उनको जा रहा है, व्हिच इज नॉट फेयर।
5: एक्चुअली थिंग इज कि मुझे समझ नहीं आता, जब जो चीज नेचुरल है, आटा नेचुरल है, चावल नेचुरल है, राइट, हाउ दैट कैन बी हलाल और नॉन हलाल और सबके लिए बराबर है, और हाउ दैट कैन बी कोशर और नॉन कोशर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव।
8: आई थिंक इट्स लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि लाइक अपने ऑडियंस को बस वो लाइक थोड़ा सा स्टैंप लग गया तो अपने वो ऑडियंस को टारगेट कंज्यूमर ऑडियंस को
6: इट इज उनको भी कवर कर रहे हैं।
5: इट इज बिगर देन दैट, इट इज नॉट जस्ट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी।
4: अच्छा, तो बताइए क्या है फिर।
5: मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे लिए एक शॉकर आया था शुरू में कि बिग ब्रांड्स इन इंडिया जो स्टैंप भी नहीं लगाते वो भी हलाल हैं, जिसमें से एक था शायद अमूल बटर और अदर दूसरे ब्रांड्स थे, वेरी रेनोन्ड स्वीट ब्रांड्स आर ऑल्सो हलाल सर्टिफाइड और सारे वेजिटेरियन हैं। तो मैंने बोला इसमें ऐसा क्या है?
4: अमूल वाला भी कहते हैं,
5: इज ऑन द नॉलेज वी गॉट सो फार। या वी एक्चुअली एंड अप रनिंग इनटू वन ऑफ देयर एक्स एम्प्लॉयज एंड शी टोल्ड अस लॉन्ग टाइम बैक। तो एज ऑफ टुडे मेरे पास कोई वो नहीं है बट इनकी वेबसाइट पे शायद मिल जाएगा कि ये सर्टिफाइड है कि नहीं है। और इन्होंने पता चला कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सर्टिफाई करना है तो इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इनकी जो फूड चेन है, इनकी प्रोसेसिंग चेन है, वो पूरी की पूरी हलाल सर्टिफाइड हो। तो हुआ क्या कि सपोज करिए मैं एक आटा बना रहा हूँ, ठीक है, या आटे के साथ ये बेकिंग ब्रेड बना रहा हूँ, ब्रेड शुड बी हलाल सर्टिफाइड। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि पहले मैं जाऊँ जहाँ से मैं वीट ले रहा हूँ उसको भी हलाल सर्टिफिकेट लेना है, जो उनसे एंजाइम्स या यीस्ट या उसमें डलेंगे, ब्रेड मेकिंग में बटर डलेगा, मैं उसको भी हलाल सर्टिफिकेट लेना, वरना मैं उससे अगर मैं नहीं लेता, वो हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेते तो मेरी ब्रेड हलाल सर्टिफाइड नहीं होगी। सो अब हुआ क्या कि एक ब्रेड को बनाने के लिए मुझे 5 या 6 बिजनेसेस को बोलना है भाई मैं तुमसे तब लूँगा जब तुम हलाल सर्टिफाइड हो, ठीक है। उसके बाद वो 5ों को जब ये सर्टिफिकेशन लेना था उनको अपनी सप्लाई चेन में जाके बोलना है कि भाई मैं तब मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरा जो अच्छा। बायर है बड़ा बायर है उसको वो सर्टिफिकेशन के लिए हलाल सर्टिफाइड। अब वो अपने छोटे सप्लायर्स को बोलेंगे या फार्मर लेवल तक जा रहे हैं। इनफैक्ट आई वॉज इन कैनेडा एंड आई वॉज सरप्राइज वेरी मच सरप्राइज एक ग्रोसरी स्टोर में हलाल गार्लिक और नॉन हलाल गार्लिक था।
4: ओह माय गॉड,
5: मैं शॉक्ड। मैंने बोला गार्लिक जो फ्रेश वेजिटेबल है इवन दैट इज कैन बी सो दैट इज आई एम नॉट सेइंग लुक यू ईट व्हाट यू वांट टू ईट, यू ईट व्हाट योर रिलीजन अलाउज। मैं कह रहा हूँ कि बींग अ हिंदू बींग अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ वी वैन वी सेलिब्रेट अवर कल्चर वैन वी सेलिब्रेट अवर यू नो फेस्टिवल्स जब हम पूजा करते हैं एटलीस्ट उसमें आप ये सर्टिफिकेट सर्टिफाइड फूड ना डालें क्योंकि हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से जो भी फूड नेचर देता है वो अनबायस्ड होता है वो प्योर होता है। तो हम सनातन जैसे सनातन में सात्विक का बहुत महत्व है। सात्विक का एक मतलब ही यही है कि प्योर एंड अनबायस्ड मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। यू नो आप जब भगवान को ऑफर करते हैं तो आप पूरे से अपने श्रद्धा से ऑफर कर रहे हैं और वो फूड किसी ने टच भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जब हम दिवाली की पूजा करते हैं किसी भी फेस्टिवल की पूजा करते हैं तो हम खाने को खाते भी नहीं टच भी नहीं करते और इस भाव से ये इनफैक्ट कई पंडित तो ये कहते हैं ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि आपने टेस्ट करना है जब तक आपने भोग ना लगाया हो। तो अगर इतनी शुद्धता से और भाव इस भाव से अगर हम अपने प्रसाद को चढ़ाते हैं भगवान पे जिसे नैवेद्यम बोलते हैं तो हम कोई भी रिलीजियस सर्टिफाइड फूड अपने भगवान को कैसे दे सकते हैं।
8: बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा था वो गार्लिक वाला एग्जाम्पल एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा जानना है वो उसके ऊपर हलाल लाइक
5: नहीं नहीं उस पर बस व्हाट आई वाज थिंग इट वाज आई डोंट इवन रिमेंबर कि कौन सी शॉप थी बिकॉज मैं कहीं किसी फ्रेंड्स फैमिली से मिलने गया था इट वाज फ्यू इयर्स बैक। बट उस पर क्या था कि एक जगह लिखा था गार्लिक और एक जगह लिखा था हलाल गार्लिक ऐसा कुछ था। मैंने लग आई वाज शॉक्ड मैंने कुछ पूछा ही नहीं क्योंकि मैं बस मैं जल्दी में था। बट दैट वॉज ऑल्सो चेंज कि ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है मतलब अभी जो मेरे सुनने में आया है दे आर बिल्डिंग्स आर बींग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया विच आर हलाल बिल्डिंग एंड नॉन हलाल बिल्डिंग।
8: पर इसके पीछे लाइक रीजनिंग क्या है कि अगर लाइक नेचुरल फूड सोर्सेज वगैरह हैं जिनमें लाइक एनिमल्स वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर लाइक वी टॉकिंग अबाउट गार्लिक जो रूट से आता है प्लांट्स है तो इनमें ऐसी प्रोडक्शन लेबल्स ऐसे क्यों लग रहे हैं।
6: मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की भी एक
5: नहीं ऐसा है। देखिए पहले तो जो बेस्ड ऑन अवर रिसर्च एंड वी कैन बी रॉन्ग बिकॉज वी आर स्टिल लर्निंग एवरी डे न्यू थिंग्स राइट। तो बेस्ड ऑन अवर रिसर्च दिस इज अ रिक्वायरमेंट मोस्टली इन मिडल ईस्ट कंट्रीज कि भाई आप हलाल सर्टिफाइड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स दो। अब उसको उन्होंने एक्सपेंड करके वेजिटेरियन इस अम्ब्रेला को एक्सपेंड करके वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में या नॉन ईटेबल प्रोडक्ट्स में भी डाल दिया है। अब हुआ क्या है कि बिजनेसिस डोंट वॉन्ट टू लूज द बिजनेस एंड जस्ट for that they buy this certificate or kosher certificate or whatever the any religious certificates or whatsoever we are not against any one particular community aur wo kehte hain ki bhai jab tak ye aap ye nahi loge aap export nahi kar sakte ab australian government isko support karti hai so that their product can be exported to middle east countries theek hai which is fine but aap usko non jo dusri communities mein us certification ki cost ko kyon charge karwa rahe ho pehle to baat ye hai। सेकेंडली मतलब आज कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई सॉ सम आई हैड सम डाटा जो वेबसाइट पे लिखा था किसी की कि दे चार्ज लाइक $2,000 to $10,000 टू सर्टिफाई द प्रोडक्ट और समथिंग। नाउ इफ़ यू चार्ज $2,000 to $10,000 एंड इफ द कंपनी हैड 10 प्रोडक्ट्स यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट $100,000 टू मे बी मोर आई एम नॉट श्योर। नाउ इफ $100,000 वो कहीं ना कहीं से तो चार्ज करेंगे ना एज ए कंज्यूमर वो हमसे चार्ज करेंगे।
4: बिल्कुल।
5: Now we are paying that money for what benefit it's going to bring to us or in the quality of the product. For example, agar ek product already government bodies ne approve kar diya. For example, India mein FSSAI hai, yahan pe TGA hai, Australia mein already approve ho chuka hai. Ab us pe certificate koi bhi religious sentiments ka lagta hai, which is okay if they want to do it. But as a non believer of that faith, what benefit it's going to give it to me?
4: आप मुझे बताएंगे कि जैसे कि मान लो कोशर है या हलाल है मान लो आटे पे लिखा है आटे को कुछ मीट तो होता नहीं उसमें कुछ
5: हाँ जी नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं होता
4: मेरे भी हिसाब से नहीं होता तो अब उसमें अगर किसी ने हलाल लिखा है तो व्हाट इट मींस
5: प्रैक्टिकली रिलीजियसली आई डोंट नो व्हाई इट मींस बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट फेथ और नॉट फ्रॉम द ज्यूज और अदर कम्युनिटी बट मेरे को जो इकोनॉमिकली लग रहा है दिख रहा है और जो नंबर्स हैं एज ऑफ टुडे बेस्ड ऑन द आई थिंक इट्स $3.5 trillion इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड हलाल इट्स नॉट बिलियन इट्स 3.5 सो इट्स आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मॉनेटरी इंसेंटिव ऑल्सो बट लुक अगेन ये उनका रिलीजन है या किसी का भी रिलीजन हो जैसे मेरा कल रिलीजन है मैं कोई सात्विक सर्टिफाइड फूड खाना चाहूँ तो मेरी मर्जी है राइट बट एट द सेम टाइम मेरे पास चॉइस तो होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं खाना आज क्या है कि आज हम किसी भी प्रोडक्ट्स वुलवर्स चले जाएँ कोल्स चले जाएँ किसी में भी चले जाएँ आई थिंक अराउंड 30-40% प्रोडक्ट्स पे तो स्टैंप लगी है लेकिन बाकी इस प्रोडक्ट्स पे स्टैंप भी नहीं लगी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यू विल बी सरप्राइज्ड
4: अगर स्टैंप नहीं लगी तो क्यों पैसा देगा
5: वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं बट दे डोंट पब्लिकली
4: एडमिट ओके जो पैसा फिर भी जा रहा
8: है आल्सो आई थिंक कि जब वो स्टैंप लगा देते हो ना हलाल या कोशर का या व्हाटएवर फेथ रिलीजियस स्टैंप यू पुट ऑन उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो भी भर जाती है Because you will find
7: वही तो हमें कम होनी चाहिए हमारे
5: लिए मेरे हिसाब से वो कुछ वैल्यू ऐड करे या वो मेरे पूजा के रिलीजियस पूजा के उससे अलाइंड हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एटलीस्ट मैं उसको देखिए सिंपल सी बात है अगर मैं आज झूठे हाथ से ग्लास ही पकड़ता हूँ तो मैं वो ग्लास मैं मंदिर में नहीं ले जा सकता मैं पूजा के लिए वो ग्लास को यूज नहीं कर सकता जब तक मैं ग्लास को दोबारा धो ना लूं साफ पानी ना डालूं और तब भगवान को अर्पण करूं मैं जब वो नहीं कर सकता तो मैं कोई भी दूसरे रिलीजियस का ऑफर्ड फूड अपने भगवान को कैसे दे सकता हूं पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है लेट्स से कि वो रिलीजियस ऑफर्ड होता है नहीं होता है नहीं होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो सर्टिफाइड है इसमें कोई रिलीजियस प्रेयर्स नहीं करी है इसमें करी है वी डोंट नो व्हाट आई वांट इज फ्रीडम टू चॉइस एंड ऑल्सो जस्ट टू अवेयर स्प्रेड अवेयरनेस इन अवर कम्युनिटी कि भाई आप जो मर्जी अपनी डेली लाइफ में खाओ ये आपकी मर्जी है कम से कम हमारे फेस्टिवल्स में और हमारे मंदिरों में वो सैंक्टिटी मेंटेन करो मैं मंदिरों के मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई फॉर एग्जांपल देखिए अभी तिरुपति बालाजी का केस हुआ था सबको पता है कि वहाँ पे जो प्रसाद था उसमें एनिमल फैट मिला था जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है हमारी वैल्यूज के हाउ मच एंगर एंड यू नो डिस क्या कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट वी हिंदूज हैड एट दैट टाइम राइट वी जस्ट वॉन्टेड
4: क्या उन लोगों को क्रूसीफाई करा गया था उन लोगों को मार दिया गया कि नहीं मार
5: ऐसा नहीं होता आपको पता है
4: क्रूसीफिकेशन बलि चढ़ाई जाती है ना
5: नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं चढ़ाई जाती कैसी बातें कर रहे
7: हैं अच्छा ये बताइए कि आप इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं
5: देखिए हमने पहले 2-3 साल अपनी कम्युनिटीज के अलग अलग ग्रुप्स में जाके अवेयरनेस फैलाई आज अब हम पहला फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं 18th of October को
4: अच्छा तीसरा इवेंट हो रहा है
5: अच्छा तो 18th of October को फर्स्ट इवेंट होगा 18th of October इवनिंग को और इसकी टिकट्स इवेंट ब्राइट पे हैं मैं स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के चाहे वो कहीं से भी हों चाहे वो फीजी इंडियंस हों चाहे वो नेपालीज हों कहीं से अफ्रीका बेस्ड हिंदू जो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर रजिस्टर करें जो बिजनेसमैन हैं जो कम्युनिटी लीडर्स हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ जुड़ें एक्सचेंज द आइडियाज़ वी गोना हैव अ ग्रेट पैनल ऑफ यू नो इंडिविजुअल्स वी गोना हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दिस मैटर दे गोना पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि वेदर इट इज़ अ राइट डिमांड टू पुट दैट थिंग इन अवर कम्युनिटी और नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इफ इट इज़ अ राइट डिमांड हाउ टू स्प्रेड अवेयरनेस एटलीस्ट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ अवर रिलीजियस प्लेस
4: तो मैं श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ श्रोताओं आपने कभी नोटिस करा है कि जैसे एक आटा का आप बोरी वो खरीद रहे हो क्या उसमें आपने पढ़ने की कोशिश करी कि उसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा है या केवल आप आटा देखा ब्रांड का नाम देखा एक्सपायरी डेट देखी और बात खत्म हो गई आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपका इस बारे में क्या अनुभव है और क्या आप जो सुमित जी मुहिम चला रहे हैं जो पूरा मूवमेंट चला रहे हैं क्या उनके साथ में आप जुड़ना चाहेंगे क्या आप सोचते हो कि ये वर्थ कॉज है या ये बेस्ट ऑफ टाइम है हमारे साथ में अपने विचार शेयर करिए इफ़ यू वांट टू कॉल मी आल्सो माय नंबर इज़ 0421 590-7921 590-7921। और हमारे साथ में जो सुमित जी हैं, सुमित जी आपने जैसे बोला कि आपको 4-5 साल हो गए जुड़े हुए इससे, आपका अनुभव क्या रहा अब तक के इतने प्रयास, आपने क्या क्या प्रयास करा और आगे का आपका क्या प्लान है?
5: देखिए जो अभी तक हमारा रहा है यही कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है
4: जी।
5: स्पेशली तो हमारा फर्स्ट एफर्ट यही है कि लोगों को बताएं, उनके फीड, लोगों का फीडबैक लें ही नहीं है
4: जी।
5: स्पेशली तो हमारा फर्स्ट एफर्ट यही है कि लोगों को बताएं, उनके फीड, लोगों का

0: सो अब हम कुछ लोग मिलके के फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं टू गेट द कम्युनिटी लीडर्स टुगेदर टू गेट देयर फीडबैक एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग इन्फ्लुएंशियल पीपल सो दैट दे वर्ड और आगे जाए और इसके बारे में हम कुछ कर सकें ताकि हमारी कम्युनिटी को पता हो कि वो क्या खा रहे हैं क्यों उन्हें क्या खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए उनकी चॉइस है बट हम उनको नॉलेज तो दें और वही चीज़ क्या वो चीज़ हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान को अर्पित की जा सकती नहीं की जी की जा सकती
1: आप वैसे तो काफ़ी लोग कॉन्शियस हो चुके हैं मैंने ये देखा है कि लोग पढ़ते हैं क्योंकि खाने में आज के रेट पे आप मैं आई एम नॉट एक्चुअली पैरानॉइड लेकिन इवन जो रॉ फूड आ रहा है क्या वो वाकई में टमाटर है अब यहाँ तक प्रश्न हो रहे हैं
0: ये तो मैंने भी पहली बार सुना है
1: यानी क्या हो रहा है कि जो हमारे अमेरिकन हैं वो कुछ भी करते हैं जो हमारे सीड आते हैं वो इस तरीके की सीड बनाए अब आपने देखा होगा कि जैसे एप्पल है खराब ही नहीं होता बनाना आप खा रहे हो वो चले जा रहा है तो उनके बीज को उनको सब मॉडिफाई कर दिया है एंड सब हो रहा है अभी जो यंग लोग हैं जैसे ऑर्गेनिक का काफ़ी खाने का आपने सुना होगा मैं काफ़ी ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करता हूँ जो भी मिल जाता है इट डज हेल्प अ लॉट आप जैसे दूध होता है आप जो नॉर्मल वाला टिपिकल मिल्क होता है और जो समझो A2 वाला आप मिल्क लेते हो और ऑर्गेनिक मिल्क लेते हो जमीन आसमान का फर्क है मैं ऑर्गेनिक पीता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा
2: हूँ क्या टेस्ट बेहतर होता है क्या
1: नहीं उसमें क्या होता है कि जैसे कि ऑर्गेनिक में तो जो गाय को जो खिलाते हो ना आप उन 100-100 किलो एक दिन में दूध देते हैं मालूम आपको तो वो कैसे आता वो तो
0: पर जितेंद्र जी ऑर्गेनिक फूड भी आज की डेट में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता देयर लॉट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली
1: मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता हाँ। है मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आज की डेट पे कॉन्शियस है क्योंकि हाँ। आप अपने शरीर को खाना भी प्योर नहीं दे सकते हो तो क्यों
0: बिल्कुल सही बात
2: है आपको क्या फायदा
1: हाँ मैं बताता हूँ आपको ये मैंने शुरुआत करा था करीब उसको 20 साल हो गए होंगे और उस समय तो 3 गुना महंगा होता था तो जैसे रात को हमारे यूपी वाले रात को दूध पीते हैं सोते हैं तो सवेरे ना सलाइवा बहुत गंदा होता था बहुत और धीरे धीरे ना वो बहुत परेशान करने लगा तो उसमें ये ऑर्गेनिक मिल्क का आना शुरू हुआ तो पहले ही दिन इट वाज सो गुड नो जो है ना वो एक खराब सब खत्म हो गया और फिर बॉडी में भी आपको मालूम पड़ने लगता है कि ये तो सिम्टम ऐसा था जो आई कुड नोटिस इमीडिएटली लेकिन आपका बाद में भी मालूम पड़ता है आप पाएंगे कि अगर आप ऑर्गेनिक आई एम नॉट ए शेयर होल्डर इन एनी ऑर्गेनिक कंपनी डिस्क्लोज लेकिन आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ रहा है
3: सुमित जी मुझे ये लगता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे
1: नहीं नहीं ऑर्गेनिक का
3: नहीं ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ हलाल की बात कर रहा हूँ
0: देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए
3: हाँ बिल्कुल
0: ठीक है आज की डेट में मैं एग्जांपल देता हूँ मैं पहले जब हमने इसकी एक लिस्ट बनाई थी 2020 में 2020 में हमने एक लिस्ट बनाई हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स पे गए क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इंडियन फूड पे था पहले कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे गए देखने गए कि भाई कितने प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफाइड है सो मी एंड टू अदर वॉलंटियर्स स्पेंड अराउंड 5 वीकेंड्स वन आफ्टर अनदर सुबह जाते थे दोपहर तक वहीं रहते थे
1: समझ जी एक काम करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आपकी ये वाली बात पे शुरू करते हैं ठीक है ना
4: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
5: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें आनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au
6: You can listen to community announcements and sponsorships on our website dapanradio.org.au
7: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au www.org.in

0: contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Darpan Hindi Karyakram sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413
2: 385 976. थोड़े और सवाल बाकी हैं, आपने काफी कुछ के जो सब जवाब दे दिए हैं। ये रीइंकार्नेशन, आप इसमें बिलीव करते हैं?
3: हाँ बिल्कुल करता हूँ। देखिए ऐसा है कि ये बिलीव वाली बात तो ये है कि अगर आप बिलीव करते हैं इसका मतलब आपको नहीं पता। आपने अगर सदगुरु को सुना है तो अक्सर ये कहते हैं कि इफ यू से आई बिलीव, इसका मतलब आपको पता नहीं है। तो ये पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सरकमस्टांशियल एविडेंस, मेरे ख्याल से हमारी लॉयर बता सकती है कि वो ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनि ने इतनी तपस्या की, हमारे रग रग में इस तरह की फीलिंग है कि हाँ होता ही है। तो उस विचार से कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, हमारे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है।
2: बात सुनिए, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी है, आई थिंक इटावा में कहीं पे, वो गांव में, पढ़ी लिखी नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं बाहर का, ठीक है। शी गॉट मैरिड, एक बच्चा होता है, उसका हस्बैंड कहीं चला जाता है, तो वो शी वाज बिट ऑफ अलोन, कहीं बाहर काम करने के लिए जैसे आते हैं। सडनली एक दिन ना उसकी डेथ जैसी हो जाती है। और बाय द वे ये इंटरनेशनल वो है एक केस जहाँ पे काफ़ी दुनिया के लोग भी आए, तो वो उसको लाके वो लिटा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और थोड़ी देर में एकदम उसके अंदर एक जान आ जाती है। शी स्टार्ट टॉकिंग इन बंगला इंग्लिश, वो राइटिंग में करने, उसने कभी लिखा नहीं।
3: ऐसा है यतिंद्र जी, इस तरह के हजारों केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं,
2: वही मैं कह रहा हूँ। तो अब फिर जो उससे बात की, यानी मेरा उसने जिस लेडी का उसके अंदर वो आ गया, तो वो उसने बताया कि
4: खबरें आए दिन आती रहती हैं कि किसी बच्चे को अपना पूरा कृष्ण जन्म याद आ गया। हाँ। वो क्यों फिर किसी लेडी को याद आया, तो वो उस गांव गई, वहाँ वो लोग मौजूद थे जहाँ से उस...
2: लेकिन मैं पूछा था प्रदीप जी से इस किताब के बारे में कि आपने, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है आपकी इस किताब की, उसमें इसका काफी बड़ा रोल है रीइंकार्नेशन का, और जिसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू रिमेम्बर पास्ट लाइफ बेसिकली, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
3: अक्सर प्रश्न लोगों का ये होता है कि हम पास्ट लाइफ रिमेम्बर क्यों नहीं करते हैं। देखिए एक तो ये है, ये मेरे विचार से ये सेफ्टी स्विच है। अगर आपको अपनी सारी पास्ट लाइफ याद आ जाए तो आप पगला जाएंगे।
2: मैं तो उसको ये कहता हूँ कि इवन जो करंट लाइफ में जितना भूलो उतना अच्छा।
3: अच्छा, लेकिन आपके जो संस्कार होते हैं, जैसे ही आप जो काम कर रहे हैं यतिंद्र जी, ये संस्कार आपके दिमाग में रहते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर में होते हैं, आप जब पुनर्जन्म होता है तो वहीं से शुरू करते हैं आप। ये जो टेंडेंसीज बन जाती है ना हमारी कि अच्छा दान देना है, ये करना है, वो करना है, ये एकदम ये आपके सूक्ष्म शरीर में के साथ जाती हैं।
2: व्हाट अबाउट जेनेटिक, कि आपके माँ बाप से नहीं आते हैं?
3: माँ बाप से अगर आती होती तो जुड़वा बच्चे एक से होते, जुड़वा बच्चे भी एक से नहीं होते हैं, सब उनका करेक्टर अलग अलग होता है।
2: एक और बात कही जाती है कि जो बेटा होता है बाप के कर्मों का प्राश्चित होता है।
3: अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होता है, लेकिन ये तो बड़ी जटिल
2: अपने कर्म है,
3: अपनी जटिल समस्या है ये, तो इस पर भी रोशोध किया जा सकता है, लेकिन मुझे
2: बुक नंबर टू
3: मुझे पता नहीं है क्या होता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा है।
4: जो रिश्ते भी बनते हैं वो कर्मों के हिसाब से ही बनते हैं, तो आपका किसी के साथ कितना जुड़ाव
2: ये भी पास ही है,
4: और कितना जुड़ाव है आपका किसी के साथ, और आपका कैसा रिश्ता रहा, वो बच्चा जिसको जो आपके घर में पैदा हुआ, आपने उसके साथ पिछले जन्म में कुछ बुरा किया, तो वो उसका, अब आप सिंपल वर्ड में कहेंगे, बदला लेने के लिए। अब वो, क्योंकि अगर आप खत्म नहीं करते हैं वो जैसा कि आपने कहा कि मैंने सुबह उठ के प्रदीप जी से,
2: अच्छा प्रदीप जी एक काम करते हैं, समय समाप्त होने को आया, हाउ टू कंक्लूड योर अवर डिस्कशन रिगार्डिंग योर बुक?
3: ऐसा क्या आखिर में मुझे मेरी जो ये बुक है वो इस तरह की है कि ये बुक क्लब टाइप की जगह बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। जैसे आपने अभी कहा तो आप गोष्ठी कीजिए कि रीइनकार्नेशन पर क्या है, कहाँ लिटरेचर अवेलेबल है, या पास्ट लाइफ क्यों नहीं याद रहती, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं।
2: आप दोबारा से हमें अच्छा बता दीजिए कि किताब अमेजोन पर मिलेगी और इस किताब का नाम है श्रोताओं ड्रॉन बैक, DRAWN बैक, और ऑथर का नाम है आपको प्रदीप PRADEEP कुमार सिन्हा।
3: इसका मैं शेयर कर दूंगा अभी इस पर अपने व्हाट्सएप
2: वो जो भी प्राइस है, अमूल किताब है ये। अच्छा सुमित जी, आप अपने फोन में व्यस्त हैं, आप कंक्लूड करें क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया।
5: हम कहां किस टॉपिक पे, सॉरी
2: आप ये बता दीजिए कि आपका प्रोग्राम कब है, कहाँ पे है,
5: हाँ जी,
2: और आप इस प्रोग्राम के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं और हमारे श्रोता आपको कैसे मदद कर सकते हैं।
5: देखिए पहले तो हमारी एक वेबसाइट है sattvikcouncil.com। हम अगर कोई श्रोता हमें सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इज अ बैंक अकाउंट डिटेल्स, यू कैन सिंपली डोनेट द मनी देयर, वी नीड मनी टू फॉर द इवेंट्स। सेकेंडली हमारा फर्स्ट इवेंट है 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को
2: कितने बजे हो, कहाँ पे?
5: डोन मोर कम्युनिटी सेंटर में है और ये शाम को 5:30 से 8 बजे तक है। हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी में है या जो कम्युनिटी कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, प्लीज़ आएँ, जो किसी मंदिर मैनेजमेंट से जुड़े हैं वो आएँ और अपने विचार प्रकट करें, लोगों से मिलें और देखें कि हम इस बारे में लोग अब हिंदू कम्युनिटी में जागरूकता
2: कैसे। प्रोग्राम में आप क्या करने वाले हैं, लोग प्रोडक्ट दिखाओगे, कुछ लोगों को समझाओगे कैसे क्या होता है?
5: बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इट्स मोस्टली अबाउट हैविंग अ पैनल डिस्कशन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड ऑल्सो कि हम इसको हम सनातन सर्टिफिकेट या सनातन यू नो वैल्यूज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं।
2: सुमित जी, आज आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुक क्लब में हमें डाला है। मैं तो शोध करूंगा आपकी किताब के ऊपर इसको कितना और जाना जाए। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं लोग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन बहुत अच्छा होने वाला है, एंजॉय संडे।
0: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
1: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में, ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।